0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास की चर्चा शुरू की है। संत पापा लियो 14वें का यह प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। यह हमारा ध्यान कृत्रिम बुद्धिमता AI के वर्तमान संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर ध्यान आकर्षित कराता है। श्रोताओं, कलिसिया निष्ठापूर्वक सच्चाई, अच्छाई और सुंदरता की खोज करने वालों को अपनी यात्रा में मित्रों की तरह देखती और हर मानव के सम्मान की रक्षा और सृष्टि की देखरेख करने के संबंध में उन्हें मूल्यवान सहयोगी मानती है। द्वितीय वैटिकन महासभा की प्रेरिताई मापदंड का अनुपालन करना, जो हमें सुनने वर्तमान समय की निशानियों की आत्मपरख और उन्हें परिभाषित करने तथा ईश वचन से प्रज्वलित होकर कलिसिया को बिना भयभीत हुए मानवीय ज्ञान का सम्मान करने हेतु निमंत्रण देता है। वास्तव में ईश वचन हमें विश्वसनीय मानकों को प्रदान करता है, जो हमें न्याय और मेल मिलाप तथा लोगों के मध्य शांति स्थापित करने की मार्ग प्रशस्त करता है। जब इन मानकों को जटिल परिस्थितियों में लागू करने की बात आती है, दर्शन शास्त्र का योगदान और मानव तथा सामाजिक विज्ञान हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ये संकाय हमें संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक आयामों को अधिक गहराई से समझने में मदद करते हैं। संत पापा योहन पॉलस द्वितीय इस बात की याद दिलाते हैं कि कलिसिया सामाजिक विज्ञानों की भूमिका का स्वागत करती है, जिससे उनमें से ठोस विचारों को निकाला जा सके, जो उन्हें कलिसियाई विभागों के संचालन में मदद करती हैं। इस तरह के ज्ञान से वार्ता करना सुसमाचार की शक्ति को कम नहीं करती है। इसके विपरीत, यह हमें इस बात को स्पष्ट रूप में समझने को मदद करती है कि वे कौन सी चीजें हैं जो व्यक्तिगत और समुदायों के जीवन को पोषित करती हैं। इस संदर्भ में संत पापा फ्रांसिस ने इस बात पर जोर दिया कि जब बहुत से विशिष्ट सवालों का सामना किया जाता है, कलिसिया एक विशेष विचार की सुनिश्चितता प्रदान नहीं करती है, लेकिन वह सुनने के वैज्ञानिक शोध और अलग अलग तरह के विचारों का स्वागत करते हुए विशेषज्ञों के बीच गंभीर और ईमानदारीपूर्ण बहस को बढ़ावा देने के महत्व को जोर देती है। श्रोताओं, सुसमाचार और मानवीय ज्ञान के इस प्रभावकारी वार्ता से कलिसिया ने निरंतर अपनी सामाजिक शिक्षा का विकास किया है, जिसके फलस्वरूप इतिहास में एक समृद्ध विरासत को बढ़ावा मिली है, जो ख्रिस्तीयता के अनुरूप व्यक्ति के ईश शास्त्रीयकरण और मनोविज्ञान समझ पर आधारित है। यह विरासत विश्वास से उत्पन्न होती है और सच्चाई के स्वरूप को परिभाषित करती है। यह तकनीकी समाधानों का भंडार नहीं है या एक आर्थिक या राजनीतिक शैली नहीं है जिसे दूसरों के विरुद्ध थोपा जाता हो। यह एक दूसरे स्वरूप का भाग है, अर्थात उन सिद्धांतों का जो घटनाओं की व्याख्या हेतु मार्गदर्शन करते हैं और ऐतिहासिक प्रक्रियाओं और उनसे उत्पन्न विकल्पों की एक धर्म ग्रंथीय समझ को बनाए रखते हैं। यहाँ हम सामाजिक सिद्धांत के कार्य को मुख्य रूप में देखते हैं, जो राजनीति या संस्थानों के उत्तरदायित्व को पूरा करने का दावा नहीं करती है, बल्कि अपने को आत्म परख के एक मूल आधार, उन बातों को पहचानने और प्रोत्साहित करने में मदद करती है, जिनके द्वारा मानवीय सम्मान, समुदायों की महत्वपूर्णता और जन सामान्य की भलाई होती है। श्रोताओं, इस बात की समझ की सच्चाई एक उपहार है जिसे हमें साझा करने की जरूरत है, न कि एक संपत्ति जिसके ऊपर किसी व्यक्ति का विशेष अधिकार। कलिसिया को शक्ति के आधार पर अपनी उपस्थिति की चाह रखने के प्रलोभन से मुक्त करती है। सच्चाई को एक नम्र रूप में घोषित करने हेतु धर्मग्रंथ के संदर्भ की पुनः खोज करना, जो अपने को नहीं थोपती, संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने ईमानदारी पूर्ण उस समय की परख हेतु निमंत्रण दिया जब सच्चाई की सेवा में असहिष्णुता और यहाँ तक कि हिंसा के इस्तेमाल को भी मंजूरी दी जाती थी। इस तर्ज पर संत पापा लियो कहते हैं कि मैंने इस पर जोर दिया है, कलिसिया यह दावा ना करे कि सत्य पर उसका एकमात्र अधिकार है, क्योंकि सच्चाई एक सीमा नहीं है जिसकी सुरक्षा की जाए, बल्कि एक अच्छाई है जिसे हमें साझा करने की आवश्यकता है। संत पापा फ्रांसिस ने इसी तथ्य को अपने जोरदार शब्दों में घोषित किया, समय अपने में स्थान से बड़ा है। हमारे लिए अति जरूरी यह है कि हम किसी शक्तिशाली पद को हासिल या सांस्कृतिक गढ़ों की रक्षा ना करते हों, बल्कि हम एक अच्छी प्रक्रिया की शुरुआत करते और उसे सशक्त होने में मदद करते हों। इस भांति सुसमाचार की सच्चाई ऊपर से थोपी नहीं जाती है, लेकिन यह समय के साथ हमारे जीवन, समुदायों और संस्कृतियों के ताने बाने में ठोस रूप से विकसित होती है। यह एक सच्चाई नहीं जो विभिन्नताओं से भयभीत होती हो, बल्कि यह उनका स्वागत और दिशा निर्देशन करती है। यह संघर्षों को खत्म नहीं करती है, बल्कि उन्हें परिवर्तित करती है, उन्हें पुनः संगठित करती है, जिसे इतिहास अपने में बिखेरने का प्रयास करती है। इस संदर्भ का हवाला हम एक बहुआयामी बहुफलक से दे सकते हैं, जहां सुसमाचार की एक सच्चाई को विभिन्न आयामों से विचार किया जा सकता है। श्रोताओं, सत्य के लिए खुलेपन का यह मनोभाव, जो अपने में एक और विभिन्न अपने में दोनों है, कलिसिया की ख्रिस्तीयता को गहराई से व्यक्त करती है, क्योंकि यह पूरे मानव परिवार का आलिंगन करती है। उसके साथ ही यह अपने को लोगों के ठोस परिस्थिति और संस्कृतियों में डुबाए रखती है। द्वितीय वैटिकन महासभा हमें याद दिलाती है, ख्रिस्तीयता के इस गुण में हर भाग अपने उपहारों को दूसरे भागों के संग और पूरी कलिसिया के संग साझा करती है। इस भांति कलिसिया एक पूर्ण और व्यक्तिगत समुदाय की ओर विकास करती है, जिसके लिए हम आपसी आदान प्रदान और पूर्ण एकता हेतु साझा प्रयास के लिए कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं। इस भांति यह इस बात का अनुसरण करती है कि ईश प्रजा विभिन्न स्थानों से लोगों का जमा होना नहीं है, लेकिन यह विभिन्न कार्यों, बुलाहटों, संस्कृतियों और परंपराओं का ताना बाना है, जहां हर कोई एक दूसरे की सहायता और उन्हें समृद्ध करने हेतु बुलाया गया है। इस संदर्भ में संत पापा पॉल छठवें यह स्वीकारते हैं कि विभिन्नताओं की ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण कलिसिया का सामाजिक धर्म सिद्धांत सभी संदर्भों के लिए एक ही सुझाव होना अपने में अवास्तविक लगता है। यही कारण है कि वे हर ख्रिस्तीय समुदाय को इस बात के लिए निमंत्रण देते हैं कि वे वास्तविकताओं को अपने देश के अनुरूप स्पष्टता और उत्तरदायी ढंग से परिभाषित करें। कलिसिया की वैश्विक प्रेरिताई और उसकी स्थानीय जड़ों के बीच का प्रभावकारी तनाव उसकी जिंदगी का एक आंतरिक गहरा पहलू है, क्योंकि वह पूरी दुनिया को अपने आगोश में लेती है। जब वह हर संदर्भ की खास मुद्दों को सच्चे आधार स्वरूप देखती है, जिसके आधार पर सुसमाचार अपना स्वरूप धारण करता है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। अभिन्न मानव विकास को बढ़ावा देने वाले विभाग ने 60वें विश्व शांति दिवस के लिए संत पापा लियो 14वें के संदेश की थीम की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2027 को मनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी को निरस्त्र करना, शांति की सेवा करना, राजनीति एक रोकथाम की जिम्मेदारी के तौर पर। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता को निरस्त्र करने की जरूरत है, उस तर्क से आजाद करने की जो इसे बाहर करने या मौत का जरिया बनाता है। न्यूक्लियर एनर्जी की तरह इसे सभी की सेवा और आम भलाई के लिए होना चाहिए। इस साल 25 मई को संत पापा लियो 14वें ने अपने पहले विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास पेश करते हुए जो अपील की थी, जिसमें टेक्नोलॉजी को निरस्त्र करने और उन्हें आम भलाई की सेवा में लगाने की अपील की गई थी। वह 1 जनवरी 2027 को होने वाले 60वें विश्व शांति दिवस के समारोह के लिए संत पापा लियो 14वें द्वारा चुनी गई थीम में भी गूंजती है। टेक्नोलॉजी को निरस्त्र करना, शांति लाना, राजनीति एक बचाव की जिम्मेदारी है, यह उनके संदेश की थीम है, जिसे आज 11 अगस्त को अभिन्न मानव विकास को बढ़ावा देने वाले विभाग ने जारी किया। अपने बयान में विभाग ने इस बात पर जोर दिया है कि इस चुनाव के साथ संत पापा राजनीति क्षेत्र में काम करने के लिए बुलाए गए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी की ओर ध्यान खींचना चाहते हैं और पूरी इंसानियत से मानव गरिमा को बढ़ावा देने और शांति बनाने में योगदान देने की अपील करते हैं, जिसकी शुरुआत टेक्नोलॉजी को निरस्त्र करने से होती है। और कल 10 अगस्त को पश्चिमी कोलंबिया में एक जोरदार भूकंप आया, जिसमें 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 570 से ज्यादा घायल होने की पुष्टि हुई और कई अभी भी लापता हैं। कई शहरों में बहुत ज्यादा नुकसान की खबरें हैं, जबकि आपातकाल टीमें उन लोगों को ढूंढ रही हैं जो गिरी हुई इमारतों के नीचे फंसे हो सकते हैं। भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई। इसका केंद्र देश के पश्चिम में सैन जोस डेल पालमार इलाके में 115 किलोमीटर की गहराई पर था। यह झटका कोलंबिया के एक बड़े हिस्से और देश की सीमाओं के बाहर भी महसूस किया गया। पश्चिमी कोलंबिया के मुख्य आबादी वाले इलाके में से एक परेरा में सबसे गंभीर हालात की खबर है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार 10 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई, जबकि 20 से ज्यादा घरों को अलग अलग स्तर का नुकसान हुआ। अस्पताल, स्कूल, गिरजाघर भी प्रभावित हुए। शहर के मुख्य धार्मिक स्थलों में से एक मानिजेल्स महागिरजाघर भी प्रभावित हुआ है। कोलंबियन धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष ने पीड़ितों और अभी भी लापता लोगों, घायलों और प्रभावित परिवारों के लिए अपनी एकजुटता और प्रार्थनाएं जताई और बचाव दल के कामों को ईश्वर को सौंप दिया। भूकंप की वजह से ट्रांसपोर्ट लिंक भी रुक गए हैं और पश्चिमी कोलंबिया के 6 हवाई अड्डों को बंद करना पड़ा। कार्यवाही की सुरक्षा पक्का करने के लिए जरूरी जाँच पूरी होने तक उड़ानें रोक दी जाएंगी। उधर पूरे भूमध्य सागर क्षेत्र के युवा 10 से 14 अगस्त तक दक्षिणी इटली में कार्ता दी लेउका के 11वें संस्करण के लिए मिल रहे हैं, जो बातचीत और भाईचारे को बढ़ावा देने की एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इटली के दक्षिणी पुलिया क्षेत्र भूमध्य सागर में शांति के लिए समर्पित 5 दिनों की मुलाकात प्रार्थना और चिंतन की मेजबानी कर रहा है। 10 से 14 अगस्त तक विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के युवा कार्ता दी लेउका के 11वें संस्करण के लिए भूमध्य सागर के तट पर सांता मरिया दी लेउका में एकत्रित हुए हैं, जिसका विषय है शांतिपूर्ण दुनिया के लिए शांति का भूमध्य सागर, सौंदर्य, कला और शांति। 2016 में स्थापित वार्षिक सभा का उद्देश्य शांति के लिए ठोस प्रतिबद्धता बनाने में मदद करने के लिए भूमध्य सागर के विभिन्न तटों से युवाओं को एक साथ लाना है।
इस वर्ष भाग लेने वालों में साइप्रस और यरूशलेम के युवा लोगों के साथ साथ कारितास और अन्य भागीदार संगठनों में शामिल इटालियन युवा भी शामिल हैं। यह सभा 18 से 35 वर्ष की आयु के लोगों के लिए खुली है। यरूशलेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पियर बत्तीस्ता पिज्जाबाला 13 अगस्त को इस इलाके में आने वाले हैं। वे कार्डिनल पानिको हॉस्पिटल और टाइकेस की कासा दी बेतानिया हॉस्पिस का दौरा करेंगे, वहां पवित्र मिसा का अनुष्ठान करेंगे। बाद में वे प्रतिभागियों के साथ सांता मारिया देल्फिनी बिस्तेरा महागिरजाघर में रखे कार्यक्रम में शामिल होंगे। 14 अगस्त को सुबह 7 बजे नई कार्ता दी लेउका की घोषणा की जाएगी और कार्डिनल पिज्जाबाला महागिरजाघर के बाहर प्रांगण में अंतिम मिसा समारोह की अध्यक्षता करेंगे। उधर 2030 में येसु के बपतिस्मा की पारंपरिक तारीख के 2000 साल पूरे हो जाएंगे। सोमवार 10 अगस्त को जॉर्डन के प्रधानमंत्री जफर हसन अगस्त ने येसु ख्रीस्त की बपतिस्मा की 2000 साल की सालगिरह के समारोह की तैयारी के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की पहली मीटिंग की अध्यक्षता की। समिति जिसमें मंत्री, धार्मिक और सामुदायिक नेता और संबंधित संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं, इस स्मरणोत्सव की तैयारी और देखरेख के लिए राष्ट्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री हसन ने जॉर्डन में कलीसिया के नेताओं के परिषद की पहल का समर्थन करने के लिए राजा अब्दुल्ला द्वितीय के निर्देशों के अनुसार तुरंत तैयारी शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, येसु ख्रीस्त के बपतिस्मा की 2000वीं सालगिरह मनाना जॉर्डन की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान और ख्रीस्तीय तीर्थ यात्रा के लिए एक वैश्विक गंतव्य के तौर पर उसकी भूमिका को दिखाता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवार कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास की चर्चा शुरू की है। संत पापा लियो 14वें का यह प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। यह हमारा ध्यान कृत्रिम बुद्धिमता AI के वर्तमान संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर ध्यान आकर्षित कराता है। श्रोताओं, कलिसिया निष्ठा पूर्वक सच्चाई, अच्छाई और सुंदरता की खोज करने वालों को अपनी यात्रा में मित्रों की तरह देखती और हर मानव के सम्मान की रक्षा और सृष्टि की देख रेख करने के संबंध में उन्हें मूल्यवान सहयोगी मानती है। द्वितीय वैटिकन महासभा की प्रेरिताई मापदंड का अनुपालन करना, जो हमें सुनने वर्तमान समय के निशानियों की आत्मपरख और उन्हें परिभाषित करने तथा ईश वचन से प्रज्वलित होकर कलिसिया को बिना भयभीत हुए मानवीय ज्ञान का सम्मान करने हेतु निमंत्रण देता है। वास्तव में ईश वचन हमें विश्वसनीय मानकों को प्रदान करता है, जो हमें न्याय और मेल मिलाप तथा लोगों के मध्य शांति स्थापित करने की मार्ग प्रशस्त करता है। जब इन मानकों को जटिल परिस्थितियों में लागू करने की बात आती है, दर्शन शास्त्र का योगदान और मानव तथा सामाजिक विज्ञान हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ये संकाय हमें संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक आयामों को अधिक गहराई से समझने में मदद करते हैं। संत पापा योहन पॉलस द्वितीय इस बात की याद दिलाते हैं कि कलिसिया सामाजिक विज्ञानों की भूमिका का स्वागत करती है, जिससे उनमें से ठोस विचारों को निकाला जा सके, जो उन्हें कलिसियाई विभागों के संचालन

आकलन में मदद करती हैं। इस तरह के ज्ञान से वार्ता करना सुसमाचार की शक्ति को कम नहीं करती है। इसके विपरीत यह हमें इस बात को स्पष्ट रूप में समझने को मदद करती है कि वे कौन सी चीजें हैं जो व्यक्तिगत और समुदायों के जीवन को पोषित करती हैं। इस संदर्भ में संत पापा फ्रांसिस ने इस बात पर जोर दिया कि जब बहुत से विशिष्ट सवालों का सामना किया जाता है, कलीसिया एक विशेष विचार की सुनिश्चितता प्रदान नहीं करती है, लेकिन वह सुनने के वैज्ञानिक शोध और अलग अलग तरह के विचारों का स्वागत करते हुए विशेषज्ञों के बीच गंभीर और ईमानदारीपूर्ण बहस को बढ़ावा देने के महत्व को जोर देती है। श्रोताओं, सुसमाचार और मानवीय ज्ञान के इस प्रभावकारी वार्ता से कलीसिया ने निरंतर अपनी सामाजिक शिक्षा का विकास किया है, जिसके फलस्वरूप इतिहास में एक समृद्ध विरासत को बढ़ावा मिली है, जो ख्रिस्तीयता के अनुरूप व्यक्ति के ईश शास्त्रीयकरण और मनोविज्ञान समझ पर आधारित है। यह विरासत विश्वास से उत्पन्न होती है और सच्चाई के स्वरूप को परिभाषित करती है। यह तकनीकी समाधानों का भंडार नहीं है या एक आर्थिक या राजनीतिक शैली नहीं है जिसे दूसरों के विरुद्ध थोपा जाता हो। यह एक दूसरे स्वरूप का भाग है, अर्थात उन सिद्धांतों का जो घटनाओं की व्याख्या हेतु मार्गदर्शन करते हैं और ऐतिहासिक प्रक्रियाओं और उनसे उत्पन्न विकल्पों की एक धर्म ग्रंथीय समझ को बनाए रखते हैं। यहाँ हम सामाजिक सिद्धांत के कार्य को मुख्य रूप में देखते हैं, जो राजनीति या संस्थानों के उत्तरदायित्व को पूरा करने का दावा नहीं करती है, बल्कि अपने को आत्म परख के एक मूल आधार उन बातों को पहचानने और प्रोत्साहित करने में मदद करती है, जिनके द्वारा मानवीय सम्मान, समुदायों की महत्वपूर्णता और जन सामान्य की भलाई होती है। श्रोताओं, इस बात की समझ की सच्चाई एक उपहार है जिसे हमें साझा करने की जरूरत है, ना कि एक संपत्ति जिसके ऊपर किसी व्यक्ति का विशेष अधिकार। कलीसिया को शक्ति के आधार पर अपनी उपस्थिति की चाह रखने के प्रलोभन से मुक्त करती है। सच्चाई को एक नम्र रूप में घोषित करने हेतु धर्मग्रंथ के संदर्भ की पुनः खोज करना, जो अपने को नहीं थोपती, संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने ईमानदारीपूर्ण उस समय की परख हेतु निमंत्रण दिया जब सच्चाई की सेवा में असहिष्णुता और यहाँ तक कि हिंसा के इस्तेमाल को भी मंजूरी दी जाती थी। इस तर्ज पर संत पापा लियो कहते हैं कि मैंने इस पर जोर दिया है, कलीसिया यह दावा ना करे कि सत्य पर उसका एकमात्र अधिकार है, क्योंकि सच्चाई एक सीमा नहीं है जिसकी सुरक्षा की जाए, बल्कि एक अच्छाई है जिसे हमें साझा करने की आवश्यकता है। संत पापा फ्रांसिस ने इसी तथ्य को अपने जोरदार शब्दों में घोषित किया, समय अपने में स्थान से बड़ा है। हमारे लिए अति जरूरी यह है कि हम किसी शक्तिशाली पद को हासिल या सांस्कृतिक गढ़ों की रक्षा ना करते हों, बल्कि हम एक अच्छी प्रक्रिया की शुरुआत करते और उसे सशक्त होने में मदद करते हों। इस भांति सुसमाचार की सच्चाई ऊपर से थोपी नहीं जाती है, लेकिन यह समय के साथ हमारे जीवन, समुदायों और संस्कृतियों के ताने बाने में ठोस रूप से विकसित होती है। यह एक सच्चाई नहीं जो विभिन्नताओं से भयभीत होती हो, बल्कि यह उनका स्वागत और दिशा निर्देशन करती है। यह संघर्षों को खत्म नहीं करती है, बल्कि उन्हें परिवर्तित करती है, उन्हें पुनः संगठित करती है, जिसे इतिहास अपने में बिखेरने का प्रयास करती है। इस संदर्भ का हवाला हम एक बहुआयामी बहुफलक से दे सकते हैं, जहां सुसमाचार की एक सच्चाई को विभिन्न आयामों से विचार किया जा सकता है। श्रोताओं, सत्य के लिए खुलेपन का यह मनोभाव, जो अपने में एक और विभिन्न अपने में दोनों है,
कलिसिया की ख्रिस्तियता को गहराई से व्यक्त करती है, क्योंकि यह पूरे मानव परिवार का आलिंगन करती है। उसके साथ ही यह अपने को लोगों के ठोस परिस्थिति और संस्कृतियों में डुबाए रखती है। द्वितीय वैटिकन महासभा हमें याद दिलाती है, ख्रिस्तियता के इस गुण में हर भाग अपने उपहारों को दूसरे भागों के संग और पूरी कलिसिया के संग साझा करती है। इस भांति कलिसिया एक पूर्ण और व्यक्तिगत समुदाय की ओर विकास करती है, जिसके लिए हम आपसी आदान प्रदान और पूर्ण एकता हेतु साझा प्रयास के लिए कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं। इस भांति यह इस बात का अनुसरण करती है कि ईश प्रजा विभिन्न स्थानों से लोगों का जमा होना नहीं है, लेकिन यह विभिन्न कार्यों, बुलाहटों, संस्कृतियों और परंपराओं का ताना बाना है, जहां हर कोई एक दूसरे की सहायता और उन्हें समृद्ध करने हेतु बुलाया गया है। इस संदर्भ में संत पापा पॉल छठवें यह स्वीकारते हैं कि विभिन्नताओं की ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण कलिसिया का सामाजिक धर्म सिद्धांत सभी संदर्भों के लिए एक ही सुझाव होना अपने में अवास्तविक लगता है। यही कारण है कि वे हर ख्रिस्तीय समुदाय को इस बात के लिए निमंत्रण देते हैं कि वे वास्तविकताओं को अपने देश के अनुरूप स्पष्टता और उत्तरदायी ढंग से परिभाषित करें। कलिसिया की वैश्विक प्रेरिताई और उसकी स्थानीय जड़ों के बीच का प्रभावकारी तनाव उसकी जिंदगी का एक आंतरिक गहरा पहलू है, क्योंकि वह पूरी दुनिया को अपने आगोश में लेती है। जब वह हर संदर्भ के खास मुद्दों को सच्चे आधार स्वरूप देखती है, जिसके आधार पर सुसमाचार अपना स्वरूप धारण करता है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। अभिन्न मानव विकास को बढ़ावा देने वाले विभाग ने 60वें विश्व शांति दिवस के लिए संत पापा लियो 14वें के संदेश की थीम की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2027 को मनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी को निरस्त्र करना, शांति की सेवा करना, राजनीति एक रोकथाम की जिम्मेदारी के तौर पर। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता को निरस्त्र करने की जरूरत है, उस तर्क से आजाद करने की जो इसे बाहर करने या मौत का जरिया बनाता है। न्यूक्लियर एनर्जी की तरह इसे सभी की सेवा और आम भलाई के लिए होना चाहिए। इस साल 25 मई को संत पापा लियो 14वें ने अपने पहले विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास पेश करते हुए जो अपील की थी, जिसमें टेक्नोलॉजी को निरस्त्र करने और उन्हें आम भलाई की सेवा में लगाने की अपील की गई थी। वह 1 जनवरी 2027 को होने वाले 60वें विश्व शांति दिवस के समारोह के लिए संत पापा लियो 14वें द्वारा चुनी गई थीम में भी गूंजती है। टेक्नोलॉजी को निरस्त्र करना, शांति लाना, राजनीति एक बचाव की जिम्मेदारी है, यह उनके संदेश की थीम है, जिसे आज 11 अगस्त को अभिन्न मानव विकास को बढ़ावा देने वाले विभाग ने जारी किया। अपने बयान में विभाग ने इस बात पर जोर दिया है कि इस चुनाव के साथ संत पापा राजनीति क्षेत्र में काम करने के लिए बुलाए गए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी की ओर ध्यान खींचना चाहते हैं और पूरी इंसानियत से मानव गरिमा को बढ़ावा देने और शांति बनाने में योगदान देने की अपील करते हैं, जिसकी शुरुआत टेक्नोलॉजी को निरस्त्र करने से होती है। और कल 10 अगस्त को पश्चिमी कोलंबिया में एक जोरदार भूकंप आया, जिसमें 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 570 से ज्यादा घायल होने की पुष्टि हुई और कई अभी भी लापता हैं। कई शहरों में बहुत ज्यादा नुकसान की खबरें हैं, जबकि आपातकाल टीमें उन लोगों को ढूंढ रही हैं जो गिरी हुई इमारतों के नीचे फंसे हो सकते हैं। भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई। इसका केंद्र देश के पश्चिम में सैन जोस डेल पालमार इलाके में 115 किलोमीटर की गहराई पर था। यह झटका कोलंबिया के एक बड़े हिस्से और देश की सीमाओं के बाहर भी महसूस किया गया। पश्चिमी कोलंबिया के मुख्य आबादी वाले इलाके में से एक परेरा में सबसे गंभीर हालात की खबर है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार 10 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई, जबकि 20 से ज्यादा घरों को अलग अलग स्तर का नुकसान हुआ। अस्पताल, स्कूल, गिरजाघर भी प्रभावित हुए। शहर के मुख्य धार्मिक स्थलों में से एक मानिजेल्स महागिरजाघर भी प्रभावित हुआ है। कोलंबियन धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष ने पीड़ितों और अभी भी लापता लोगों, घायलों और प्रभावित परिवारों के लिए अपनी एकजुटता और प्रार्थनाएं जताई और बचाव दल के कामों को ईश्वर को सौंप दिया। भूकंप की वजह से ट्रांसपोर्ट लिंक भी रुक गए हैं और पश्चिमी कोलंबिया के 6 हवाई अड्डों को बंद करना पड़ा। कार्यवाही की सुरक्षा पक्का करने के लिए जरूरी जाँच पूरी होने तक उड़ानें रोक दी जाएंगी। उधर पूरे भूमध्य सागर क्षेत्र के युवा 10 से 14 अगस्त तक दक्षिणी इटली में कार्ता दी लेउका के 11वें संस्करण के लिए मिल रहे हैं, जो बातचीत और भाईचारे को बढ़ावा देने की एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इटली के दक्षिणी पुलिया क्षेत्र भूमध्य सागर में शांति के लिए समर्पित 5 दिनों की मुलाकात प्रार्थना और चिंतन की मेजबानी कर रहा है। 10 से 14 अगस्त तक विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के युवा कार्ता दी लेउका के 11वें संस्करण के लिए भूमध्य सागर के तट पर सांता मरिया दी लेउका में एकत्रित हुए हैं, जिसका विषय है शांतिपूर्ण दुनिया के लिए शांति का भूमध्य सागर, सौंदर्य, कला और शांति। 2016 में स्थापित वार्षिक सभा का उद्देश्य शांति के लिए ठोस प्रतिबद्धता बनाने में मदद करने के लिए भूमध्य सागर के विभिन्न तटों से युवाओं को एक साथ लाना है।
इस वर्ष भाग लेने वालों में साइप्रस और यरूशलेम के युवा लोगों के साथ साथ कारितास और अन्य भागीदार संगठनों में शामिल इटालियन युवा भी शामिल हैं। यह सभा 18 से 35 वर्ष की आयु के लोगों के लिए खुली है। यरूशलेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पियर बत्तीस्ता पिज्जाबाला 13 अगस्त को इस इलाके में आने वाले हैं। वे कार्डिनल पानिको हॉस्पिटल और टाइकेस की कासा दी बेतानिया हॉस्पिस का दौरा करेंगे, वहां पवित्र मिसा का अनुष्ठान करेंगे। बाद में वे प्रतिभागियों के साथ सांता मारिया देल फिनी बिस्टेरा महागिरजाघर में रखे कार्यक्रम में शामिल होंगे। 14 अगस्त को सुबह 7 बजे नई कार्ता दी लेउका की घोषणा की जाएगी और कार्डिनल पिज्जाबाला महागिरजाघर के बाहर प्रांगण में अंतिम मिसा समारोह की अध्यक्षता करेंगे। उधर 2030 में येसु के बपतिस्मा की पारंपरिक तारीख के 2000 साल पूरे हो जाएंगे। सोमवार 10 अगस्त को जॉर्डन के प्रधानमंत्री जफर हसन अगस्त ने येसु ख्रीस्त की बपतिस्मा की 2000 साल की सालगिरह के समारोह की तैयारी के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की पहली मीटिंग की अध्यक्षता की। समिति जिसमें मंत्री, धार्मिक और सामुदायिक नेता और संबंधित संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं, इस स्मरणोत्सव की तैयारी और देखरेख के लिए राष्ट्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री हसन ने जॉर्डन में कलीसिया के नेताओं के परिषद की पहल का समर्थन करने के लिए राजा अब्दुल्ला द्वितीय के निर्देशों के अनुसार तुरंत तैयारी शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, येसु ख्रीस्त के बपतिस्मा की 2000वीं सालगिरह मनाना जॉर्डन की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान और ख्रीस्तीय तीर्थ यात्रा के लिए एक वैश्विक गंतव्य के तौर पर उसकी भूमिका को दिखाता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: श्री रोम और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र काफी कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: महिमा का पहला भेद, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं,
2: मतलब हम विश्वास में दृढ़ रहें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का दूसरा भेद, प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित होते हैं,
2: मतलब हम ईश्वर को दिन दिन अधिक प्यार करें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का तीसरा भेद पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है,
2: मतलब हम अपने पड़ोसियों को प्यार कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा रखी जाती है,
2: मतलब हम अपने कर्तव्य काम ठीक से कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का पांचवा भेद, माता मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है।
2: मतलब हमारे बिछुड़े भाई बहने असल धर्म में फिर लौट सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नवियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

हमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा।
2: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम का पांचवा अध्याय वार्षिक पूजन धर्म विधि कालचक्र को समर्पित है, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे, जिससे हर विश्वासी के जीवन में इसके मूल्य की व्याख्या हो सके। सर्वप्रथम हमारे लिए यह बात महत्वपूर्ण हो जाता है, पूजन धर्म विधि वार्षिक कालचक्र में ख्रिस्तीय त्योहारों को रेखांकित करना कलिसियाई भाषा को विस्तृत बनाती है, जिसके लिए हम ईश सेवक मठाधीश प्रॉस्पर ग्विरेंजर के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि विश्व प्रेरित पत्र मिदियातोर देई में संत पापा पियूस 12वें ही कहते हैं, यह अतीत की घटनाओं का निर्जीव प्रस्तुतिकरण नहीं है या एक सरल और सिर्फ एक पिछले युग का रिकॉर्ड मात्र नहीं है, यह हमारे लिए स्वयं ख्रिस्त की उपस्थिति है जो कलिसय में हमेशा जीवित रहते हैं। यहाँ हम उनके अति करुणामयी यात्रा को पाते हैं, जिसे उन्होंने अपने भौतिक जीवन में शुरू किया, इस उद्देश्य से कि वे मानव को अपने रहस्यों के बारे में बता सकें और उन्हें स्वयं अपने में जी सकें। उन रहस्यों को हम आज भी हमेशा की तरह उपस्थित और सजीव पाते हैं। पूजन धर्म विधि कालचक्र को इस भांति हमें इस रूप में समझने की जरूरत है कि वह एक निरंतर मुक्ति का नवीकृत

0: की नींव और मूल मानते हैं, जो वास्तविक त्योहार का दिन है। बहुत से आधुनिक भाषाओं में हम इसे डीएस डोमिनी की संज्ञा में इंगित पाते हैं, जो हमारे लिए प्रभु का दिन है। यहाँ तक कि इन भाषाओं में जहाँ हम इसे सूर्य के दिन स्वरूप इंगित पाते हैं, यह ख्रीस्त से संयुक्ति पर चिंतन हेतु हमें अग्रसर करता है। वे धार्मिकता के सूर्य हैं, जो हर व्यक्ति को प्रकाशमान करते हैं। संत पापा योहन पौलुस द्वितीय अपने प्रेरितिक प्रबोधन डीएस डोमिनी में शिक्षा देते हुए कहते हैं कि रविवार प्रभु का दिन है, यह कलीसिया का दिवस है, मानव का दिन और अंततः दिनों का दिन। संत पापा लियो ने कहा, चूंकि रविवार साप्ताहिक पास्का है, यह हमें उस दिन की याद दिलाती है जब यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे। यह वह दिन भी है जो हमारे लिए समय के अर्थ को प्रकट करता है। पुनरुत्थान से फूटना, यह मानव समय से परे जाना, महीने वर्षों सदियों जैसे कि एक दिशा में सधी तीर जो अपने लक्ष्य ख्रिस्त के द्वितीय आगमन की ओर इंगित कराती हो।
1: La domenica prefigura il giorno finale.
0: रविवार हमारे लिए अंतिम दिन, न्याय के दिन का पूर्वाभास देता है जब हम पुनर्जीवित होंगे। संत पापा लियो ने कहा कि रविवार के पवित्रकरण हेतु हमारे लिए यह जरूरी है कि हम यूखरिस्त का अनुष्ठान करें, ईश वचनों को सुनें और ख्रिस्त के शरीर में सहभागी हों। जैसे कि धर्म सभा के आचार्य कहते हैं, यह एक साथ आते हुए एक होना है। कहने का अर्थ, यह ख्रिस्तियों का आनंदमय मिलन है। इस समारोह में ख्रिस्तीय समुदाय यीशु ख्रिस्त के संग अपनी एकता को दृश्यमान बनाते और ख्रिस्त के संग अपने जुड़े होने और कलीसिया के प्रति अपनी निष्ठा का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यह समुदाय अपनी आभासी उपस्थिति से नहीं बदली जा सकती है और ना ही इसे हम एक निष्क्रिय मिलन तक ही सीमित कर सकते हैं। धर्म विधि का समुदाय वास्तव में भाई बहनों के सक्रिय सहभागिता से पूरी होती है, जिसे एक साथ बुलाया जाता है ताकि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट किया जा सके। जिन्होंने यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित करके उन्हें फिर से जीवन दिया और एक आशा को बनाए रखा है। इस संदर्भ में संत पापा लियो ने कहा कि मैं हर किसी से आग्रह करता हूँ कि आप एक बेहतर संभव परिस्थिति की खोज करें, जिससे वे भी जो रविवार की धर्म विधि में सहभागी होने हेतु समय नहीं निकाल पाते हैं, उसमें सहभागी हो सकें। प्रिय मित्रों, संत पापा ने कहा कि वार्षिक पूजन धर्म विधि कालचक्र का, जो रविवारों के द्वारा विराम दिया जाता है, अपना एक आकर्षक इतिहास है, जहां हम कलीसिया के विश्वास और आस्था को गुंथा पाते हैं। वास्तव में द्वितीय सदी के प्रारंभिक काल से ही साप्ताहिक पास्का समारोह अपने में उस वार्षिक पास्का अति समारोही त्योहार से संयुक्त था, जिसे अति हर्षोल्लास के साथ 50 दिनों तक मनाया जाता था, जिसकी चरम सीमा पेंतेकोस्त होती थी। इसकी तैयारी 40 काल से ही पश्चाताप के मनोभाव से शुरू होती थी। ख्रिस्त जयंती के काल चक्र का विकास बाद में हुआ, जो पास्का कालचक्र की शैली पर आधारित था, जिसके फलस्वरूप हम शब्द के शरीर धारण रहस्य को जीने के योग्य होते हैं, जहां हम ख्रिस्त के जन्म और दुनिया में उनके प्रकटीकरण को पाते हैं। कलीसिया इसके उपरांत विभिन्न समयों के अंतराल में कुमारी मरियम की आराधना को अपने में समाहित करती है, जो उनके बेटे के मुक्तिदायी कार्य के एक अविभाज्य बंधन से जुड़ा हुआ है, और शहीदों और अन्य संतों की स्मृति, जो स्वर्ग में ईश्वर की महिमा गाते और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं।
1: L'anno liturgico ripropone così in forma sacramentale la pedagogia della storia della salvezza.
0: पूजन विधि वार्षिक कालचक्र इस भांति मुक्ति के इतिहास की शिक्षा को संस्कार के रूप में दोहराती है। यह मसीह की प्रतीक्षा से लेकर पास्का रहस्य की पूर्णता और भविष्य में महिमा के पूर्व ज्ञान तक विश्वासियों का मार्गदर्शन करती है।

इसमें कलीसिया ख्रीस्त के मुक्तिदायी रहस्य की महत्वपूर्णता का समारोह विश्वासियों को पूर्ण गहराई में सहभागी होने के योग्य बनाते हुए मनाती है। यही कारण है पूजन विधि वार्षिक कालचक्र सभी प्रेरित कार्यों के लिए मुख्य मार्गदर्शिका और महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली की एक रूपरेखा बनती है। इतना कहने के बाद संत पापा लियो 14वें ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज ज्यादा तापमान की वजह से बुधवार ये आम दर्शन समारोह सन पेत्रुस महागिरजाघर में हुए। पोलिश तीर्थ यात्रियों का स्वागत करते हुए संत पापा लियो 14वें ने याद दिलाया कि अगस्त का महीना पोलिश इतिहास और आध्यात्मिकता में एक खास जगह रखता है। संत पापा ने कहा, मैं पोलैंड के लोगों को दिल से अभिवादन करता हूँ। अगस्त आपके लिए खास सालगिरह का महीना है। माता मरिया की दुआ की वजह से 15 अगस्त 1920 को वारसाव की लड़ाई में जीत मिली, जिसने पोलैंड और यूरोप की किस्मत बदल दी। 15 अगस्त स्वर्गारोहण के एक दिन पहले हम संत मैक्सिमिलियन मरिया कोलबे की याद करते हैं, जिन्होंने ऑटस्विट्स के जर्मन नाजी यातना शिविर में एक साथी कैदी के लिए अपनी जान दे दी थी। इन घटनाओं की यादें हमें निष्कलंक माता मरियम के दिखाए शांति के रास्ते पर ले जाएं। इसके बाद संत पापा ने स्पानी भाषी विश्वासियों का अभिवादन कर 10 अगस्त को कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में आए जबरदस्त भूकंप से तबाह लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं और प्रार्थना दोहराई। इस भूकंप में अब तक 250 लोगों के मरने की खबर मिली है। मृतकों के अनंत शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए संत पापा लियो 14वें ने मृतकों के परिवारों और अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे लोगों और इस दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना का भरोसा दिलाया। उन्होंने आगे कहा, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने बचाव काम में और पीड़ितों की मदद करने में सहयोग दिया है। संत पापा ने कोलंबिया को शुरुआती आर्थिक मदद भेजा, जो इस आपातकाल के समय में उनकी करीबी का एक पक्का संकेत है। 1,00,000 यूरो की यह रकम सीधे कोलंबियन धर्माध्यक्ष सम्मेलन के राष्ट्रीय प्रेरितिक एवं सामाजिक मामलों के सचिवालय को भेजी गई, जो मदद इकट्ठा करने और बांटने के लिए एक केंद्रीकृत समन्वय बिंदु के तौर पर काम कर रहा है, ताकि यह प्रभावित धर्म प्रांतों को एकजुटता से मदद दे सके। उधर फिलिस्तीन के आखिरी बचे हुए क्रिस्तीय गांव तैबेह में बसने वालों के हमले बार बार होने वाली सच्चाई बन गए हैं। फादर बशर फवादले, जो पिछले 5 सालों से मुक्तिदाता क्रिस्त लैटिन पल्ली के पल्ली पुरोहित के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें डर है कि स्थानीय परिवारों को अपनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तैबेह बाइबल में एफ्रेम नाम से जाना जाता है, जहां कहा जाता है कि येसु और उनके शिष्यों ने शरण ली थी। स्थानीय समुदाय को अब सुनियोजित तरीके से डराने, धमकाने, संपत्ति जब्त करने और बस्तियों पर कब्जा करने का सामना करना पड़ रहा है। इस रविवार को इजरायली सेना ने तैबेह को बाहर के लोगों के लिए बंद कर दिया, जिसे इसराइली लोग असल में फिलिस्तीनी शहर में नहीं जा पा रहे हैं। एक मिलिट्री प्रवक्ता के मुताबिक यह रोक सिर्फ इसराइलियों के लिए लागू होती है, फिलिस्तीनियों के लिए नहीं, और इसे इलाके में इसराइलियों के कई हिंसक हमलों के बाद इलाके के लोगों की सुरक्षा के लिए लागू किया गया है। उधर म्यांमार में यांगून के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल चार्ल्स मोंग बो देश के विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि भले ही वे बहुत ज्यादा दुख झेल रहे हैं, वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि ख्रीस्त उनके साथ हैं और वे मुश्किलों से जूझ रहे देश के युवाओं से विवेक रखने वाले पुरुष और महिला बनने की अपील करते हैं। रविवार मिसा समारोह के दौरान अपने उपदेश में म्यांमार धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष ने विश्वासियों को याद दिलाया कि संतमती के सुसमाचार के अनुसार मार्ग में तूफान के दौरान डरे हुए शिष्यों की तरह उन्हें अपना डर त्यागना होगा और साहस रखना होगा, यह जानकर कि प्रभु उनके पास हैं। कार्डिनल ने माना कि म्यांमार के लोगों को भारी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। लड़ाई और हिंसा, बेघर होने और गरीबी, डर और अनिश्चितता, दुख और नुकसान के तूफान आए हैं, जिन्होंने घर, स्कूल, रोजी रोटी और कभी कभी अपनों की जान भी छीन ली है। कार्डिनल ने माना कि कई परिवार पूछ रहे हैं, यह तूफान कब खत्म होगा? कई जवान लोग पूछ रहे हैं, मेरा भविष्य कैसा होगा? कई माता पिता चिंता करते हैं,
क्या मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे? इस संदर्भ में कार्डिनल बो ने कहा, ईश्वर को एक माँ जो अपने बच्चों को दिलासा देती है, एक पिता जो अपने परिवार की रक्षा करता है, एक पुरोहित जो मुश्किल समय में अपने लोगों के साथ रहता है, या बेघर परिवारों की सेवा करने वाली धर्म बहनों में देखा जा सकता है। कार्डिनल ने आगे कहा, ईश्वर किसी ऐसे व्यक्ति के जरिए मौजूद होते हैं जो किसी दूसरे भूखे व्यक्ति के साथ थोड़ा खाना बांटता है, एक क्रिश्चिय के जरिए जो कहता है मैं नफरत नहीं करूंगा, एक ऐसे व्यक्ति के जरिए जो कहता है मैं शांति चुनूंगा। कार्डिनल बो ने विश्वासियों को यह भी याद दिलाया कि क्रिस्त हमारे साथ हैं। विश्वास हमेशा आखिरी शब्द होता है और उनसे अपनी नजर हमेशा यीशु पर रखने की अपील की। उधर 9 अगस्त को चेन्नई के स्टेला मारिस कॉलेज में भारत के 5वें नेशनल मार्च फॉर लाइफ के लिए 5,000 से ज्यादा लोग एकत्रित हुए। यह एक ऐसा मौका था जिसकी अहमियत सिर्फ पब्लिक असेंबली से कहीं ज्यादा थी। असल में यह कार्यक्रम उन परिवारों, छात्रों और स्वयंसेवकों की लगातार कोशिशों को दिखाता है जिन्होंने 5 सालों में अपने अपने इलाकों, कॉलेजों और समुदायों में लगातार काम किया था ताकि अजन्मे बच्चों की मौत को रोका जा सके। यह खास कामयाबी इस साल के मार्च को समझने के लिए जरूरी थी जिसे मद्रास मैलापुर महाधर्म प्रांत ने मेजबानी की थी और भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन CBCI के तहत कारिस इंडिया ने आयोजित किया था जो एक सालाना मीटिंग के तौर पर शुरू हुआ था। वह समय के साथ एक संगठित राष्ट्रीय नेटवर्क बन गया। पहली बार महाधर्म प्रांत ने हर पल्ली में प्रो लाइफ सेल बनाया जिससे प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का एक संगठनात्मक बेस बना। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा।
2: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम का पांचवा अध्याय वार्षिक पूजन धर्म विधि काल चक्र को समर्पित है, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे, जिससे हर विश्वासी के जीवन में इसके मूल्य की व्याख्या हो सके। सर्वप्रथम हमारे लिए यह बात महत्वपूर्ण हो जाता है, पूजन धर्म विधि वार्षिक कालचक्र में ख्रिस्तीय त्योहारों को रेखांकित करना कलिसियाई भाषा को विस्तृत बनाती है, जिसके लिए हम ईश सेवक मठाधीश प्रॉस्पर ग्वीरेंजर के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि विश्व प्रेरित पत्र मीडियातोर देई में संत पापा पियूस 12वें ही कहते हैं, यह अतीत की घटनाओं का निर्जीव प्रस्तुतिकरण नहीं है या एक सरल और सिर्फ एक पिछले युग का रिकॉर्ड मात्र नहीं है, यह हमारे लिए स्वयं ख्रिस्त की उपस्थिति है जो कलिस्य में हमेशा जीवित रहते हैं। यहाँ हम उनकी अति करुणामयी यात्रा को पाते हैं, जिसे उन्होंने अपने भौतिक जीवन में शुरू किया इस उद्देश्य से कि वे मानव को अपने रहस्यों के बारे में बता सकें और उन्हें स्वयं अपने में जी सकें। उन रहस्यों को हम आज भी हमेशा की तरह उपस्थित और सजीव पाते हैं। पूजन धर्म विधि कालचक्र को इस भांति हमें इस रूप में समझने की जरूरत है कि वह एक निरंतर मुक्ति का नवीकृत कार्य है, जिसे ख्रिस्त इतिहास में पूरा करते हैं। कलिसिया अपने इस सामायिक कालचक्र के द्वारा ईश्वर के मुक्ति कार्य संग जुड़ी रहती है, जिससे सभी विश्वासीगण उनकी कृपा से परिपूर्ण हो सकें। संत पापा लियो ने कहा कि ईश्वर से मिलन जो हमारे लिए मरकर पुनः जी उठे, वह लक्ष्य है जिसका अनुसरण कलिसिया करती है, जहां वह पास्का के समारोह को अपनी हर गतिविधि के केंद्र बिंदु में समाहित करती है। अतः धर्म सभा के आचार्य रविवार को पूरे धर्म विधि काल की नींव और मूल मानते हैं, जो वास्तविक त्योहार का दिन है। बहुत से आधुनिक भाषाओं में हम इसे दिएस डोमिनी की संज्ञा में इंगित पाते हैं, जो हमारे लिए प्रभु का दिन है। यहाँ तक कि इन भाषाओं में जहाँ हम इसे सूर्य के दिन स्वरूप इंगित पाते हैं, यह ख्रीस्त से संयुक्ति पर चिंतन हेतु हमें अग्रसर करता है। वे धार्मिकता के सूर्य हैं, जो हर व्यक्ति को प्रकाशमान करते हैं। संत पापा योहन पौलुस द्वितीय अपने प्रेरितिक प्रबोधन दिएस डोमिनी में शिक्षा देते हुए कहते हैं कि रविवार प्रभु का दिन है, यह कलिसिया का दिवस है, मानव का दिन और अंततः दिनों का दिन। संत पापा लियो ने कहा, चूंकि रविवार साप्ताहिक पास्का है, यह हमें उस दिन की याद दिलाती है जब यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे। यह वह दिन भी है जो हमारे लिए समय के अर्थ को प्रकट करता है। पुनरुत्थान से फूटना, यह मानव समय से परे जाना, महीने, वर्षों, सदियों जैसे कि एक दिशा में सधी तीर जो अपने लक्ष्य ख्रीस्त के द्वितीय आगमन की ओर इंगित कराती हो।
2: La domenica prefigura il giorno finale.
1: रविवार हमारे लिए अंतिम दिन, न्याय के दिन का पूर्वाभास देता है जब हम पुनर्जीवित होंगे। संत पापा लियो ने कहा कि रविवार के पवित्रकरण हेतु हमारे लिए यह जरूरी है कि हम यूखरिस्त का अनुष्ठान करें, ईश वचनों को सुने और ख्रीस्त के शरीर में सहभागी हों। जैसे कि धर्म सभा के आचार्य कहते हैं, यह एक साथ आते हुए एक होना है। कहने का अर्थ, यह ख्रिस्तियों का आनंदमय मिलन है। इस समारोह में ख्रिस्तीय समुदाय यीशु ख्रिस्त के संग अपनी एकता को दृश्यमान बनाते और ख्रिस्त के संग अपने जुड़े होने और कलीसिया के प्रति अपनी निष्ठा का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यह समुदाय अपनी आभासी उपस्थिति से नहीं बदली जा सकती है और ना ही इसे हम एक निष्क्रिय मिलन तक ही सीमित कर सकते हैं। धर्म विधि का समुदाय वास्तव में भाई बहनों के सक्रिय सहभागिता से पूरी होती है, जिसे एक साथ बुलाया जाता है ताकि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट किया जा सके, जिन्होंने यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित करके उन्हें फिर से जीवन दिया और एक आशा को बनाए रखा है। इस संदर्भ में संत पापा लियो ने कहा कि मैं हर किसी से आग्रह करता हूँ कि आप एक बेहतर संभव परिस्थिति की खोज करें, जिससे वे भी जो रविवार की धर्मविधि में सहभागी होने हेतु समय नहीं निकाल पाते हैं, उसमें सहभागी हो सकें। प्रिय मित्रों, संत पापा ने कहा कि वार्षिक पूजन धर्मविधि कालचक्र का जो रविवारों के द्वारा विराम दिया जाता है, अपना एक आकर्षक इतिहास है, जहां हम कलीसिया के विश्वास और आस्था को गुंथा पाते हैं। वास्तव में द्वितीय सदी के प्रारंभिक काल से ही साप्ताहिक पास्का समारोह अपने में उस वार्षिक पास्का अति समारोही त्योहार से संयुक्त था, जिसे अति हर्षोल्लास के साथ 50 दिनों तक मनाया जाता था, जिसकी चरम सीमा पेंतेकोस्त होती थी। इसकी तैयारी 40 काल से ही पश्चाताप के मनोभाव से शुरू होती थी। ख्रीस्त जयंती के काल चक्र का विकास बाद में हुआ, जो पास्का कालचक्र की शैली पर आधारित था, जिसके फलस्वरूप हम शब्द के शरीर धारण रहस्य को जीने के योग्य होते हैं, जहां हम ख्रीस्त के जन्म और दुनिया में उनके प्रकटीकरण को पाते हैं। कलीसिया इसके उपरांत विभिन्न समयों के अंतराल में कुमारी मरियम की आराधना को अपने में समाहित करती है, जो उनके बेटे के मुक्तिदायी कार्य के एक अविभाज्य बंधन से जुड़ा हुआ है, और शहीदों और अन्य संतों की स्मृति जो स्वर्ग में ईश्वर की महिमा गाते और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं।
2: L'anno liturgico ripropone così in forma sacramentale la pedagogia della storia della salvezza.
1: पूजन विधि वार्षिक कालचक्र इस भांति मुक्ति के इतिहास की शिक्षा को संस्कार के रूप में दोहराती है। यह मसीह की प्रतीक्षा से लेकर पास्का रहस्य की पूर्णता और भविष्य में महिमा के पूर्व ज्ञान तक विश्वासियों का मार्गदर्शन करती है। इसमें कलीसिया ख्रीस्त के मुक्तिदायी रहस्य की महत्वपूर्णता का समारोह विश्वासियों को पूर्ण गहराई में सहभागी होने के योग्य बनाते हुए मनाती है। यही कारण है पूजन विधि वार्षिक कालचक्र सभी प्रेरित कार्यों के लिए मुख्य मार्गदर्शिका और महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली की एक रूपरेखा बनती है। इतना कहने के बाद संत पापा लियो 14वें ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज ज्यादा तापमान की वजह से बुधवार ये आम दर्शन समारोह सन पेत्रुस महागिरजाघर में हुए। पोलिश तीर्थ यात्रियों का स्वागत करते हुए संत पापा लियो 14वें ने याद दिलाया कि अगस्त का महीना पोलिश इतिहास और आध्यात्मिकता में एक खास जगह रखता है। संत पापा ने कहा, मैं पोलैंड के लोगों को दिल से अभिवादन करता हूँ। अगस्त आपके लिए खास सालगिरह का महीना है। माता मरिया की दुआ की वजह से 15 अगस्त 1920 को वारसाव की लड़ाई में जीत मिली, जिसने पोलैंड और यूरोप की किस्मत बदल दी। 15 अगस्त स्वर्गारोहण के एक दिन पहले हम संत मैक्सिमिलियन मरिया कोलबे की याद करते हैं, जिन्होंने आउटस्विट्ज के जर्मन नाजी यातना शिविर में एक साथी कैदी के लिए अपनी जान दे दी थी। इन घटनाओं की यादें हमें निष्कलंक माता मरियम के दिखाए शांति के रास्ते पर ले जाएं। इसके बाद संत पापा ने स्पानी भाषी विश्वासियों का अभिवादन कर 10 अगस्त को कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में आए जबरदस्त भूकंप से तबाह लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं और प्रार्थना दोहराई। इस भूकंप में अब तक 250 लोगों के मरने की खबर मिली है। मृतकों के अनंत शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए संत पापा लियो 14वें ने मृतकों के परिवारों और अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे लोगों और इस दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना का भरोसा दिलाया। उन्होंने आगे कहा, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने बचाव काम में और पीड़ितों की मदद करने में सहयोग दिया है। संत पापा ने कोलंबिया को शुरुआती आर्थिक मदद भेजा, जो इस आपातकाल के समय में उनकी करीबी का एक पक्का संकेत है। 1,00,000 यूरो की यह रकम सीधे कोलंबियन धर्माध्यक्ष सम्मेलन के राष्ट्रीय प्रेरितिक एवं सामाजिक मामलों के सचिवालय को भेजी गई, जो मदद इकट्ठा करने और बांटने के लिए एक केंद्रीकृत समन्वय बिंदु के तौर पर काम कर रहा है, ताकि यह प्रभावित धर्म प्रांतों को एकजुटता से मदद दे सके। उधर फिलिस्तीन के आखिरी बचे हुए क्रिस्तीय गांव तैबेह में बसने वालों के हमले बार बार होने वाली सच्चाई बन गए हैं। फादर बशर फवादले, जो पिछले 5 सालों से मुक्तिदाता क्रिस्त लैटिन पल्ली के पल्ली पुरोहित के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें डर है कि स्थानीय परिवारों को अपनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तैबेह बाइबल में एफ्रेम नाम से जाना जाता है, जहां कहा जाता है कि येसु और उनके शिष्यों ने शरण ली थी। स्थानीय समुदाय को अब सुनियोजित तरीके से डराने, धमकाने, संपत्ति जब्त करने और बस्तियों पर कब्जा करने का सामना करना पड़ रहा है। इस रविवार को इजरायली सेना ने तैबेह को बाहर के लोगों के लिए बंद कर दिया, जिसे इसराइली लोग असल में फिलिस्तीनी शहर में नहीं जा पा रहे हैं। एक मिलिट्री प्रवक्ता के मुताबिक यह रोक सिर्फ इसराइलियों के लिए लागू होती है, फिलिस्तीनियों के लिए नहीं, और इसे इलाके में इसराइलियों के कई हिंसक हमलों के बाद इलाके के लोगों की सुरक्षा के लिए लागू किया गया है। उधर म्यांमार में यांगून के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल चार्ल्स मोंग बो देश के विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि भले ही वे बहुत ज्यादा दुख झेल रहे हैं, वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि ख्रीस्त उनके साथ हैं और वे मुश्किलों से जूझ रहे देश के युवाओं से विवेक रखने वाले पुरुष और महिला बनने की अपील करते हैं। रविवार मिसा समारोह के दौरान अपने उपदेश में म्यांमार धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष ने विश्वासियों को याद दिलाया कि संत मती के सुसमाचार के अनुसार मार्ग में तूफान के दौरान डरे हुए शिष्यों की तरह उन्हें अपना डर त्यागना होगा और साहस रखना होगा, यह जानकर कि प्रभु उनके पास हैं। कार्डिनल ने माना कि म्यांमार के लोगों को भारी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। लड़ाई और हिंसा, बेघर होने और गरीबी, डर और अनिश्चितता, दुख और नुकसान के तूफान आए हैं, जिन्होंने घर, स्कूल, रोजी रोटी और कभी कभी अपनों की जान भी छीन ली है। कार्डिनल ने माना कि कई परिवार पूछ रहे हैं, यह तूफान कब खत्म होगा? कई जवान लोग पूछ रहे हैं, मेरा भविष्य कैसा होगा?
कई माता पिता चिंता करते हैं, क्या मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। इस संदर्भ में कार्डिनल बो ने कहा, ईश्वर को एक माँ जो अपने बच्चों को दिलासा देती है, एक पिता जो अपने परिवार की रक्षा करता है, एक पुरोहित जो मुश्किल समय में अपने लोगों के साथ रहता है, या बेघर परिवारों की सेवा करने वाली धर्म बहनों में देखा जा सकता है। कार्डिनल ने आगे कहा, ईश्वर किसी ऐसे व्यक्ति के जरिए मौजूद होते हैं जो किसी दूसरे भूखे व्यक्ति के साथ थोड़ा खाना बांटता है, एक क्रिश्चिय के जरिए जो कहता है मैं नफरत नहीं करूंगा, एक ऐसे व्यक्ति के जरिए जो कहता है मैं शांति चुनूंगा। कार्डिनल बो ने विश्वासियों को यह भी याद दिलाया कि क्रिस्त हमारे साथ हैं। विश्वास हमेशा आखिरी शब्द होता है और उनसे अपनी नजर हमेशा यीशु पर रखने की अपील की। उधर 9 अगस्त को चेन्नई के स्टेला मारिस कॉलेज में भारत के 5वें नेशनल मार्च फॉर लाइफ के लिए 5,000 से ज्यादा लोग एकत्रित हुए। यह एक ऐसा मौका था जिसकी अहमियत सिर्फ पब्लिक असेंबली से कहीं ज्यादा थी। असल में यह कार्यक्रम उन परिवारों, छात्रों और स्वयं सेवकों की लगातार कोशिशों को दिखाता है जिन्होंने 5 सालों में अपने अपने इलाकों, कॉलेजों और समुदायों में लगातार काम किया था ताकि अजन्मे बच्चों की मौत को रोका जा सके। यह खास कामयाबी इस साल के मार्च को समझने के लिए जरूरी थी जिसे मद्रास मैलापुर महाधर्म प्रांत ने मेजबानी की थी और भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन CBCI के तहत कारिस इंडिया ने आयोजित किया था जो एक सालाना मीटिंग के तौर पर शुरू हुआ था। वह समय के साथ एक संगठित राष्ट्रीय नेटवर्क बन गया। पहली बार महाधर्म प्रांत ने हर पल्ली में प्रो लाइफ सेल बनाया जिससे प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का एक संगठनात्मक बेस बना। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।